0: पहुंच गई हूँ। तुम ठीक हो?
1: यस अंकल।
0: हाँ ऑफ कोर्स एक्टिंग सुखी पापा। हस्बैंड वाइफ स्टूपिड फ्रेंड्स। अब सो जाओ। गुड नाइट। मामा
2: चलो जल्दी।